क्या हर गंभीरा गुण गहीरा कोय न जाने तेरा केता के बड़े चीरा रहा सब सुरति में सुरत कमाई सब कीमत में कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गर ग्रहाई कहण ना जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब

सरण हर हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर, तू घट घट अंतर सर्व।

नानक हम नीच करम्मा सरण पर की राख हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतः पातशाही दशमी चौपाई।

नमस्कार तुसी को हमारी सुख प्रजा जिनाप सवारी सुखन को सुगन सुख दिया सत्रन को पम मद किया कट कट के अंतर की जानत पल पर की पीर पछानत चीटी ते कुंचरो सठूला सभ्य पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन रख पाए ते दुखी सुख पाए साधु।

संबत सत्र सहस पृद्धा अर्ध सहस फंती निकहद्धा पादर्वसदी अष्टमी रववारा तीरस तुद्रव ग्रंथ सुदारा एत श्री चत्रवख्याने त्रिया चत्र मंत्री पूर्व संवाद चार सौ पंच चत्र समापत मस्त शुभ मस्त अभिजुं दोहरा।

जय कथा सुने अर्घ्य वैद दुख प्राप्त है निकट न आवै विष्णु भगत की ए फल होई आद व्याद ट्वा सके न कोई संवत सत्र है सहस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दावन तप प्रसाद कर ग्रंथ सुधा।

कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाने लया रलाए। हम धनवंत पागट सच नाए, हर गुण गाव हैं सहज सुभाए। जुगो जुग अटल जबर तखत दे मालक अमृत दे दाते बाणी दे बहुत गुरसागर रतनी पर पूरे अमृत संत जुग है नहीं दूरे। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरे। सुन वड भागी आ हर अमृत बाणी राम, तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी गोद विच सुभाए मान। गुरु सवारी खालसा साध संगत जीओ, आओ बहुत ही वड भागे हो जो सतगुरां दी गोद विच बैठ के अलाही बाणी दा कीर्तन सरवण कर रहे सी। समा होया है कथा कीर्तन सुखदाई, जो विशा चल रहा सी पिछले दिनां दे विच। शब्द गुरु है ते सुरत जिहड़ा साडा ध्यान है उन्हूं चेला आख्या गया है। आओ सतगुरु जी आप विचार करवा लैन। कुछ कहन तो पहला समूह माई पाई गुरफतेह की सांझ करिए। आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कल आपां विचार कीती सी कि धन गुरु नानक पातशाह जी ने मनुखता नूं शब्द की ताबिया दे विच लिआंदा है। तुसी इतिहास नूं पढ़न वाले बैठे हो, इस धरती ते एक बड़ी वड्डी क्रांति है कि इस धरती ते पहली वार गुरु नानक साहिब ने शब्द नूं गुरु आख्या। भावें कि धार्मिक ग्रंथ पहलां भी सन, पर जिहड़ा सत्कार गुरु ग्रंथ साहिब दा गुरु नानक साहिब जी ने कीता है। सुंदर मंजी साहिब उत्ते प्रकाश करना, उत्ते चंदोवा लाउणा, नहीं तो इस तो पहलां धार्मिक ग्रंथ कोई कच्च दे विच लै के चले जांदा सी, कोई हाथ दे विच फड़ के लै जांदा सी। पर जिहड़ा सत्कार गुरु नानक साहिब ने दसां सरूपां दे विच वरत के शब्द गुरु दा कीता है, ये अलौकिक है, ये विलक्षण है। सतगुरु जी ने, क्योंकि आपां गुरु अर्जन देव पातशाह माता गंगा जी उन्हां दे व्याह पुरब की बात भी कर रहे सी, ये जिहड़े आनंद कारज ने जिहड़ी व्याह की गल है,

पंखी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो सकह तल गुर सेविय अहंस सहज सुभाय। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दा शाह जिस पास बैठे आ सो ही है

नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रत पल हो हम बालक तुमरे तारे तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रत पल हो

रहाओ। कोट पराद हमारे खंडह अनक विधि समझावह, हम अज्ञान अल्प मत तोरी, तुम अपन बिरदर खावो, तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सोहेले रख।

पंजाब में अलमकोट है, संगत की जिस तरह की हुई है ना, रामपुर आनंद में, तो ये

प्रयात छंद नमो सर्वमान्य समस्त निदाने नमो देव देवे पेखी पेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथ निसंगी पमाथे नमो पान पाने नमो बान बाने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तन ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादि नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रपंगी प्रमाते समस्ती विभूते कलंकांग बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणी नमो अस्त्र माणी नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता भेखीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित्य नारायणी क्रूर करमि नमो प्रेत प्रेत देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नम राग रूपे नम साहु नम पूपे नम दान दानी नम मान मानी नम रोग रोगी नमस्त स्नान नम मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदन सचदनंद सर्वंग प्रणासी सदा सचदनंद सर्वंग प्रणासी अनुपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध दाम बोध दाम वृद्धकर्ता आदो वृद्ध अर्धंग अगंग घर्ता परम परम परमेश्वरं पुरुषपालंग सदा सर्वदा सदाता दयालंग अछेदी भेदी अनाम काम समस्त उपराजी समस्त स्थाम तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं पीत हैं पे हैं प्रभु हैं जू हैं देश हैं पे सैंग पुजह प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमस्कार मान्य समस्त निदाने नमस्तवंग नाथे नमस्तवंग प्रपाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साहसाज नमो साहसाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोके नमो सोख सोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्ण नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समसंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे को कर्म प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धंग निवासी चरपट छंद त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगी अचल भोगी अचल राजे अटल साजे अखल धर्म कला कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग बाणे सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुक्ता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रूआल छंद त्वा प्रसाद आदि रूप अनाद मूर्त जौन प्रख पारु सर्व मान तन मान देव पेवा दुदारु सर्व पालक सर्व काल सर्व को पुन कालो जत्र तत्र विराजी ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आदि पुरख आधार मूर्ता जौन आदि असेख देश और न पेह जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हो फैल्य अनुराग नाम काम विहीन पेख तम न जाय सर्वमान सर्वत्र मान सदै मान ताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूपा अनेक खेल खेल अखेल खेल अंत को फिर एक दे भेव न जानही जे भेद और कतेब रूप रंग न जात पासो जानहि कह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिराए चतर चक मानहि प्रतीन लोक चौदह के बिखाय जग जापे जह जाप आद देव अनाद मूर्त थाप सब जे थाप परम रूप अपनीत मूर्त पूर्ण पुरख पारु सर्व सर्व चयम पवग्रण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सो परम रत भूता लक भेस अंग राग नरंग जाक जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दाय काम आप रूप अमीक अनुसत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर भंज आदि रूप सूत अंगहीन अभंगनात्म एक पुरख पारु सर्व लायक सर्व काग सर्व को प्रत पारु सर्व गंता सर्व हंता सर्व त्यन भेख सर्व शासन जानहि जेह रूप रंग अरेख परम वेद प्राण जा कह नेत भाग नेत कोट सिमरत प्राण शास्त्र नावै न आवै वह चित्त माधु पार छंद प्रसाद गुण गण उदार महिमा परासन भंग मान अंगन भव प्रकाश निस्तर नास आजन बाहु साहन साहु राजन राज पहानन पान देवन देव महान
ඉන්ද්‍රන් ඉන්ද්‍ර බාලන් බාල රංකරනක කාලන් කාලන පූතේ අංගාබා පහඟ ගාත මෙත්ත පාල ගොන ගනු දරු මොන ගන් පරණම් නිර් පහනකාම ආතදත් ප්‍රචන්ඩ මිත ගත කණ්ඩ ආලිසා කරම අදරිස්සා තරම ස්‍රබාපරන අඩේ අන්ඩන් බඩයන් චාත්‍රි චන්ද ප්‍රසාද ගෝබෙන්දේ මකන්දේ උදාරී පාරී හරියම් කරින්ගල නමය කමේ පුජන් ප්‍රයත් සන්දේ චතර චක්‍ර කර්තාව චතර චක්‍ර හර්තාව චතර චක්‍ර දානි චතර චක්‍ර ජානි චතර චක්‍ර වර්ති චතර චක්‍ර පර්ති චතර චක්‍ර පාලේ චතර චක්‍ර කාලේ චතර චක්‍ර පාසේ චතර චක්‍ර වාසේ චතර චක්‍ර මානේ චතර චක්‍ර දානේ චාචරී ඡන්ද න සතර න මිත්‍ර න පරමං න පිතර න කර්මං න කායි අජනමං අජායි න චිත්‍රය න මිත්‍රය පරය පවිත්‍රය ප්‍රතිසා අදිසා අදර්සා අකර්සයි භගවති ඡන්ද ත ප්‍රසාද කත්තේ කේ අච්ජ දිසා කේ අපජ පිසා කේ අගන්ධ කර්ම කේ අපංජ පරමයි කේ අපජ පේ කේ අපජ ලෝකය කේ අදිත සෝකය කේ අවදූත බරණ කේ උත්කරණ එක රාජින් ප්‍රපං කේ තරමං තෝ ජයං කේ සෝක බරණ එක සර්බා පරණයි के जगतं कृतियां के छत्रंग छत्रियां के ब्रह्मं स्वरूप के अनुपहनूप के अदेव के आप अपेव के चित्रंग विहीन के एक अधीन के रोजी रजाकार हिमा रहा के पाक बयाव के गैबल गैब के अफल गुनाह के साहन साह के कारण कुनिंद के रोजी देहंद के राज करी ही मैं के कर्म करी मैं के सर्वं कली है के सर्वं दली है ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨੇ ਐਂ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਦਾਨੇ ਐਂ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਗਾਉਣੇ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭਾਉਣੇ ਐਂ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਦਿਸਾ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜਾ ਐਂ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਸਾਜਾ ਐਂ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਦੀਨਾ ਐਂ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਲੀਨਾ ਐਂ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਦਿਸਾ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਕਾਲੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਪਾਲੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਹੰਤਾ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਗੰਤਾ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਖਾਜਾ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜਾ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਸੁਖਾਇ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੁਖਾਇ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਤ੍ਰਾਣਾਇ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਪ੍ਰਾਣਾਇ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸਾ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸਾਇ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨਿਆ ਸਦਾ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨਿਆ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਜਾਪਿਆ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਥਾਪਿਆ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭਾਨੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਇੰਦਰਾਇ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਚੰਦਰਾਇ ਕੇ ਸਰਵੰ ਕਲੀਮੈ ਕੇ ਪਰਮ ਅਪੀਮੈ ਕੇ ਅਕਲ ਅਲਾਮੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੈ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਜੂ ਹੈ ਤਮਾਮ ਰਜੂ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਰ ਸਲਾਮੈ ਸਲੀਖੰਦ ਮਦਾਮੈ ਗਨੀਮਲ ਸਕਸਤੈ ਗਰੀਬਲ ਪ੍ਰਸਤੈ ਬਿਲਾਂਦਲ ਮਕਾਨੈ ਜਿਮਿਨ ਜਮਾਨੈ ਤਮਿਜਲ ਤਮਾਮੈ ਰੁਜਲ ਨਦਾਨੈ ਹਰੀਫਲ ਜੀਮ ਰਜਾਇਕ ਜਕੀਨੈ ਅਨੇਕ ਉਤਰੰਗ ਹੈ ਭੇਦੈ ਭੰਗੈ ਜੀਜਲ ਨਵਾਜੈ ਗਰੀਮੁਰਖ ਰਾਜੈ ਨਿਰੋਕਤ ਸਰੂਪੈ ਤ੍ਰਿਮੁਕਤਿ ਭੂਤੈ ਪ੍ਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭੰਸ ਜੁਗਤ ਸਦਾ ਸਦੈਵ ਸਰੂਪੈ ਭੇਦੀ ਅਨੁਪੈ ਸਮਸਤ ਉਪਰਾਜੈ ਸਦਾ ਸਰਬਸਾਜੈ ਸਮਸਤ ਸਲਾਮੈ ਸਦੈਵ ਕਾਮੈ ਨਿਰਬਾਧ ਸਰੂਪੈ ਅਗਾਧ ਹਨੂਪੈ ਓ ਅੰਗਾਧ ਰੂਪੈ ਨਾਸ ਰੂਪੈ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰ ਭੰਗੀ ਤ੍ਰ ਕਾਮੇ ਤ੍ਰ ਵਰਗੰ ਤ੍ਰ ਬਾਦੇ ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਧੇ ਸੁਭੰ ਸੁਰਭਾਗੇ ਸੁ ਸਰਬਾ ਅਨਰਾਗੇ ਤ੍ਰ ਭੁਗਤ ਸਰੂਪੈ ਹੰਛੇ ਜਿਹ ਛੂਤੈ ਕੇ ਨਰਕੁੰ ਪ੍ਰਣਾਸੈ ਪ੍ਰਤੀਰ ਪ੍ਰਵਾਸੈ ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭੈ ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ ਹਿਵੇ ਭੁਗਤ ਸਰੂਪੈ ਪ੍ਰਯੁਗਤ ਅਨੂਪੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹਿਵੇ ਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭੈ ਅਨੁਕਤ ਸਰੂਪੈ ਪ੍ਰਯੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਭੰਗ ਹੈ ਨੰਗ ਹੈ ਅਪੇਖਿਆ ਲੇਖਿਆ ਪਰਮੈ ਕਰਮੈ ਨਾਦ ਜੁਗਾਦਿਆਂ ਜਹ ਹੈ ਬਹਿ ਹੈ ਭੂਤਿਆਂ ਧੂਤਿਆਂ ਨਾਸਿਆਂ ਦਾਸਿਆਂ ਧੰਦ ਹੈ ਬੰਦ ਹੈ ਅਭਗਤ ਬਿਰਖਤਿਆਂ ਨਾਸੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨ ਚਿੰਤਿਆ ਸੁਨਿੰਤਿਆ ਅਲਿਖਿਆ ਅਧਿਖਿਆ ਲਿਖਿਆ ਭੀਖਿਆ ਟਾਹ ਹੈ ਗਾਹ ਹੈ ਸਮ ਹੈ ਗਮ ਹੈ ਨੀਲ ਹੈ ਨਾਦੇ ਅਨਿਤ ਹੈ ਸੁਨਿਤ ਹੈ ਜਾਤ ਹੈ ਜਾਦ ਹੈ ਚਰਪੜ ਛੰਦ ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਬੰ ਹੰਤਾ ਸਰਬੰ ਗੰਤਾ ਸਰਬੰ ਖਿਆਤਾ ਸਰਬੰ ਗਿਆਤਾ ਸਰਬੰ ਹਰਤਾ ਸਰਬੰ ਕਰਤਾ ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਾਣ ਸਰਬੰ ਤ੍ਰਾਣ ਸਰਬੰ ਕਰਮੰ ਸਰਬੰ ਧਰਮੰ ਸਰਬੰ ਜੁਗਤਾ ਸਰਬੰ ਮੁਕਤਾ ਰਛਾਵਲ ਛੰਦ ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੀ ਸਦਾਵੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤੰ ਪ੍ਰਮਾਤੇ ਸਦਾ ਸਰਬਸਾਥੀ ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ ਨਿਰਬਾਧ ਵਿਭੂਤੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਨਿਰਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਸਰਭੰਗੀ ਅਨੁਪੇ ਨਾ ਪੋਤਰਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾ ਨਾ ਸਤਰਾ ਨਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨਾ ਤਾਤਾ ਨਾ ਮਾਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਨਾ ਪਾਤਾ ਨਾ ਸਾਕੁੰ ਤਰੀਕਾ ਮਿੱਤੋ ਮੀ ਕੈ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਭੈ ਹਾਜਾ ਹਾਜਾ ਹੈ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੇ ਜਾਹਰ ਜਹੂਰੈ ਕੇ ਹਾਜਰ ਹਜੂਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਸਲਾਮੈ ਸਮਸਤ ਕਲਾਮ ਹੈ
के साहिब दिमागे के हुसन चिरागे के कामल करीमे कराज करी मैं के रोजी देहांद है कराज करिंद करीमल कमाले कुसल जमाले गरीबल खराज गरीबल नवाज है हरी फुलस कन है हरा सिल्प कन कलंक प्रणा सह समस्तल निवास अगंजल गनीमे रजाय करही मैं समस्तल जुबाहे के साहिब किराहे के नरक प्रणा सह बहतल निवास है के सरबल गवन है मिसर डवन है तमामल तजीम है समस्तल अजीज है परम परमी सह समस्तल अदीस है दिसल लेख है मिसल भेख है जिमिनल जबाह है अमिकल अंबाह है करीमल कमाल है के जोरत जमाल है के अचल प्रकाश है कि मितो सुबास है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभ है कि अचल अनंग है कि मितो भंग है माध भार छंद तप प्रसाद मोन मन प्रणाम गुण गण मदाम अरब अगंज हर नर प्रपंज अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर खंड बर नर अमंड अनुपव नास मोन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मदामन छिज अंग आसन भंग उपमा पारु गात मित उदारू जल थल अमंड दिस विस भंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुपव नास त्रित तर त्रास आदन बाहे एक सदाह ओंकार आदि कथनी नाद खलखंड ख्याल गुरबर काल घर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात अजिज न बात अन चंगात अनंद बात अन टुट भंडार अन ठट उपारू आडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अन बरण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त प्रसाद करणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जगदीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ब वारण है त्रित के धन है जाके कर्ण है मन मान है जग जन है सरबं पर है सरबं कर है सरपास सरबनास है करना कर है बेसो पर है सरबेश्वर है जगतीश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है पारते पर है करना कर है जपा जप है थपा थप है कृता कृत है अमृता अमृत है अमृता अमृत है करना कृत है अकृता कृता धरणी त्रेता अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृता अमृता अमृता है अजबा कृता अमृता अमृता है नर नायक है खल कायक है बेसो पर है करुणालय है नृपनायक है सरपायक है भवपंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वा कृता है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है आत्म बस है जस के जस है पुजह प्रयात छंद नमो सूरज सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राजे राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग शांत रूपे नमो परम तत्ंग अतत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह करता नमो संत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादिंग विभूते कलंकर रूपे अलंकर अलंके नमो आशासी नमो बांक बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी।

ताका मूढ़ो चार्द भेदा जाको भेव न पावद भेदा ताको कर पाहन अनमानत माह मूढ़ कत भेद न जान तो माह देव को कहत सदा सेवो निरंकार का चीनत नह भेव आप अपनी बुद्ध जीती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लिखा न जाय पसारा केह विसजा प्रथम संसारा एकै रूपा नूप सरूपा रंग भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी औत भुज खान बाहर रच दीनी कहूं फूल राजा हूं बैठा कहूं सिमट पर शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचम पव आद जुगात स्वरूप सजम पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बारो सिख संघरो दोठ जिते उठवत उत्पाता सकल मलेस करो रण काता जी अस तोज तब सरणी परे तिनके दोठ जोग तुहा मरे पुरख जौन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह है रक्षा होता हिसब काला दुष्ट अरह टरंत काला कृपा दृष्ट तन जाह निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध कर्म सब होई जुड़ छा छिप सकै न कोई एक बार जिंत मैं संभारा काल पास ते ताहु बारा जनरा नाम तिहारू कहा दर्द दुष्ट दुख तेरा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लेहो बारी सर्व ठोर मोह हो सहाई दुष्ट दुख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभ्राता किलबिक सगल देह को हरता दोष दुखियन को छह करता श्री अतुज पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वांछित फल पावे सोई दुखनत सब आपद कोई अड़ेलो सुना गोंग जो जाहि सुरसना पावई सुना मूल चितला चातरता आवई दुख दर्द भाव निकट नंत्र नर के रह हो जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सतरह सहस पण जय अर्ध सहस फुन तीन कह जय भाद्रव सुधी अष्टमी रारो तीरुस्तद्रव ग्रंथ सुधाराओ सवैया पाए गह जपते तुमरे तपते को आंख तरे नहिया न्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सबाई बहुभेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे बखाने ओ दोहरा सगल द्वार को चाड़ कै

कोल्लू चरखा चक्की चक ताल बारों ले बहुत अनंत लाटू मादानियन गा पंखी पौंदी लैणा सा सिवै चार पाए जंत नानक पौंद गंत नंत बंधन बंत पै स्वय पै कटन च सब कोय नच नच हस चले सिरोए उड़ न जाई सिद न होए।

विचार दे मंगे सहसा गुण सोप करे संसार चोरा यारा ते कुड़ियारा खारा बा बेकार एक हुंदा खाए चरया था उतना भिकाई कार जल था जिया पुरिया लोआ आकार आया कार ओ जा किस तू है जाने तिना भीते।

जितना तय कौआ हंस हो है। अमृत सर सतगुर सतवारी जितना तय कौआ हंस हो है। जितना

प्राणी पिता माता तक महत दिवस रात दोए दाई दया खेले सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां।